गोपाला आह चुप मंदी मी चुप ना केलो यद्रानी कुरदानी गोपाला आह चुप मंदी मी चुप ना केलो कोड़ी को समझा व गोपाला दानी गुंतन का चांदू गोपाला कुत्ते ने कावला गोपाला दानी गुंतन